0: 너무 썩겨. 무한. 왜 거의 사람을 해. 너무 너무 썩겨.
1: 아니요. 빠니게 하나. 빠니게 하나. 빠니게 하나.
2: 빠니게 하나. 빠니게 하나. 빠니게 하나. 빠니게 하나. 너무 너무 썩겨. 우주에 다 깼다.
1: 너무 너무. 빠니 빠니 빠니. 빠니게 하나. 빠니게 하나.
0: 됐다. 머리 잘렸다. 됐다. 너무 너무 썩겨.
3: लापरवाही नगरौं प्रज्वलनशील पदार्थमा सबैले दिउँ ध्यान।
1: एक काटी सलाईले लिन सक्छ ज्यान।
2: सलाई तथा लाइटरहरू बाल बच्चाहरूले देख्ने तथा भेट्ने ठाउँमा नराखौं।
1: धुम्रपान गरी जथाभावी चुरटको ठुटाहरू नफ्याकौं।
3: घर वरिपरि झिक्रा पात पतिङ्गर नथुपारौं।
4: होरी बतासको मौसम अनि आगलागी हुने बढी सम्भावना बेलैमा सबैले होस पुर्याउं। अकल्पनीय घटनाबाट आफू पनि जोगिऊ र अरूलाई पनि जोगाऊ।
5: जनहितको लागि हाम्रो रेडियोको प्रयास।
6: यो हो हाम्रो रेडियो 103.4 मेगाहर्ज।

0: के बामा
1: जिन्दा तारे आर तर कर गया हूँ के दिन में घर बटे खाली कर रहा हूँ जो बने तो रेंट तेरे ना बने
0: आजूले के भी टेंशन ना होएगा जाती बनी जमींदार को पैसा सा मौत ही चु
2: तभी चिंता ना करिया मैं सब ठीक होने